0: मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं, ले तेरे पाँव पड़ूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू।
1: थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम।
0: हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
0: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर फुर फुर फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो
3: कह दो।

0: Like a Gold अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आ रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाए सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाए।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें, एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच

0: बताइए।
1: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
0: ओह काम तो बताइए बताइए।
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: आप यहाँ आए इसलिए।

0: वादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा
0: सुनो तो
1: ना
0: सुनो तो सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।
1: भूल को ना जाओगे?
0: ना भूलूंगा।

0: तो हम तुम्हारे हैं।
1: वेरी गुड।
0: तेरे ही सहारे हैं।
1: जॉली गुड।
0: दिल भी तुम्हारा है।
1: क्या कहने हैं।

0: Breakfast with Dee Prancha.
1: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
2: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
1: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
2: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
1: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
2: Let's just say I found my flow.
1: Always discreet. Live with no compromise.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: हेलो यूके वालों बिग बॉस इज बैक और इस बार सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवन दान तथा टू मेरी जान एक्स्ट्रा लाइफ एक्स्ट्रा मौका मतलब एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्स्ट्रा धोखा स्ट्रीमिंग फ्रॉम 6 सितंबर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स
5: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
6: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
7: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
2: नाम है तेरा
1: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208426078 पर कॉल करें। जय श्री राम।
3: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
6: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
7: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
5: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208514 5400। Online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
10: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
14: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे, अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे। और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी, उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
13: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.

0: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
11: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the MKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
15: Deep Raja, waking you up every weekend. Like.

0: Breakfast with Deep Raja. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And a pound in your pocket this morning can get you 126.15 Indian rupees. But don't forget to exchange in branch, online or via the SBI Yono mobile app. Of course, terms and conditions apply, but don't delay. Make those exchanges today.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Breakfast with Deep Raja.
1: Okay, you ready? Here we go.
0: Time now for the multiple choice question.
1: Okay, here we have it. I need your help here. This is an unusual one because I didn't realize this. So, jaldi say, give me the answer. What is the national fruit of England? What is the national fruit of England? Is it A banana, B a grape, or C an apple? What is the national fruit of England? A, a banana, B, a grape, or C, an apple? You know the numbers. And whatever you do, give me your name as well. You can't just not tell me. Otherwise, how can I put you up there if you've won? What is the national fruit? Tell me now. And don't forget the number.
0: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. Deep Raja across the Leica Radio Network.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: 07300998823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
6: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
7: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
8: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
7: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Dubai is coming to London.
5: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
4: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
5: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
4: Hurry and register now
5: at nknpropertyexpo.com.
4: Your next investment could begin here.
5: Official Radio Partner, Leica Radio.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: Sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sonatours now on 0208 951 0111.

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में था ये गाना, जिसे लिया था फिल्म हम किसी से कम नहीं। और उससे पहले आपने काला पत्थर फिल्म का गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ आज के शो की शुरुआत हो गई है और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूं ऋतु शर्मा, आप सबका साथ देने के लिए हाजिर हूं अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। मौसम आज अच्छा है, हल्की हल्की ठंडक है और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप सब खुश हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं। बस और क्या चाहिए, मज़े करते रहिए। ऐसे ही कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे गीत सुनवाती रहूँ। और आज है सैटरडे का दिन, 5 सितंबर है आज, और आज का दिन खास है क्योंकि आज भारत में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और ये डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे एंड 1962 में वो देश के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने थे। और जब वो राष्ट्रपति बने थे तो जो स्टूडेंट्स थे और उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने उनका जन्म दिवस मनाने की इच्छा जताई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने की बजाय मैं चाहूँगा कि इसे शिक्षकों के सम्मान में एज ए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। और तब से हर साल आज ही के दिन 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। और जानते हैं 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो अगर मैं कहूं कि आज भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.15 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
8: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
9: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
8: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: यस, इस बार लता मंगेशकर का साथ दे रहे थे अमित कुमार और ये थी 1981 की फिल्म लव स्टोरी जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: To chaliye aapke dheru messages mile hain, ek nazar un par ab dal li jaye. तो थैंक यू राजेश जी, आपको मैसेज मिला है, कहते हैं आपको हैप्पी वाला शनिवार, आपको भी। और आप सब पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी कैसी रही। अरे बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा किया। कल मैं हरे कृष्णा टेम्पल गई थी और हमारा जो टाइम स्लॉट था वो रात को 9:30 का था, लेकिन बावजूद इसके मुझे लाइन में लगकर 1.5 घंटा वेट करना पड़ा और हम लोग काफ़ी रात हो गई वापस घर आने में। बट बहुत मज़ा आया। और जब मेहनत के बाद यू नो खड़े रहकर लाइन में आपको भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। और कल क्या खूबसूरत सजाया था उन्होंने भगवान को, मज़ा ही आ गया। तो आई एम श्योर आपकी भी जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी रही होगी। सो थैंक यू राजेश जी आपके मैसेज के लिए। और यस, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थ एनिवर्सरी है और इसीलिए आज उसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हरी श्रोता जी स्वागत है, रोजी रजीना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिमांशु पटेल जी, हंसा जी, जासू जी, ललित छत्रीसा जी कहते हैं दो बैक टू बैक गाने सुनकर मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुणा जी, महेंद्र बाजारिया जी, मालती जी, भारत गंगा राम जी, ज्योति, वंदना, मीना जी, हर्जन जी, हरीश खत्री जी, गिरीश जी, आपने अपने कान्हा की फोटो भेजी है। क्या सुंदर फोटो है, कान्हा तो हर रूप में सुंदर लगते हैं। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। फारूक मोहम्मद जी आप हमें सुन रहे हैं, विजय गुडूरी जी थैंक यू, सटन में आपका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आपने जो अच्छे शब्द मेरे लिए लिखकर भेजे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा ही साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपने लिखा है कि जिंदगी में जलन और घमंड से हमेशा दूर रहो, क्योंकि जलन सुकून छीन लेती है और घमंड इंसानियत मिटा देता है। और ये बात 100% आपने सच कही है हमेशा की तरह। थैंक यू वियना से अनिल सोनी जी, साक्षी थैंक यू, मृदु जी, सलमा जी कैन से मिस शेख, तोची जी, चंदू जी, चंदुशाह जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इतने प्यारे मैसेजेस भिजवाई दिए हैं। प्रज्ञा स्वागत है आपका, एन उल्लास ऑफ कोर्स। तो अगला ये खूबसूरत गाना क्यों ना मैं आप सबके नाम कर दूँ, कर दूँ क्या, चलिए फिर।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: बिमल रॉय की ये फिल्म वैजयंती माला और दिलीप कुमार की एक्टिंग के कारण तो हिट हुई ही थी, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म के हिट होने में बहुत बड़ा योगदान इस फिल्म के म्यूज़िक का था और जिसे दिया था सलिल चौधरी ने। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सलिल चौधरी, जिन्हें प्यार से सब लोग सलिल दा कहते हैं, आज ही के दिन 5 सितंबर को 1995 में, जब उनकी एज 72 यानी कि 72 ईयर्स की थी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: उनके कुछ गाने ऐसे हैं जिनके कारण फिल्में हिट हुई हैं। आपको बता दें कि एक फिल्म आई थी 2 बीघा ज़मीन, जिससे उन्हें बहुत पहचान मिली, और इसके अलावा उनके गाने, आनंद फिल्म का वो गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए, क्या खूबसूरत गाना है, या फिर मधुमती का ये गीत जो मैंने आपको सुनवाया, या फिर परख फिल्म का वो गीत ओ सजना बरखा बहार आई। कई सारे गाने हैं जो अमर हैं, जिनमें सलिल चौधरी का संगीत है। और आपको बता दें कि उन्होंने न सिर्फ हिंदी भाषा में बल्कि बांग्ला में, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती सहित 13 से अधिक भाषाओं में संगीत दिया। और कहते हैं जो मलयालम सिनेमा में उन्होंने संगीत दिया वो आज भी उनका स्वर्णिम काल माना जाता है। कुछ बातें ज़रूर बताऊंगी और इनके गाने आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स में सुनवाऊंगी, लेकिन आज की यादें में कौन होगा वो मैं आपको बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले थैंक यू कह देती हूँ परविंदर मथारू आपको, हमारी आंटी जी, स्वागत है आपका। गुरुदेव गांजा, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में। और जासू जी, फरीदा गुलाम अली, महेंद्र बजारिया जी, आपका कहना है कि मधुमती का गाना हमें दे दो। चलिए, हमने ये गाना आपके नाम पर किया। और इसके अलावा किशोर लाडवा जी, आप भी शो सुन रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड, रितु शर्मा लाइव ऑन लाइक अ गोल्ड ग्रेटर लंदन। हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप दुबई घूमने जाना चाहते हैं या फिर कहीं हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथोल ट्रैवल को कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर। और साउथोल ट्रैवल इज इट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
4: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
3: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
4: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
3: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
4: Let's just say I found my flow.
3: Always discreet. Live with no compromise.
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
5: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रो।
3: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट, क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव, एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स, फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट, बी पार्ट ऑफ दुबईज ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 0203963 5757 to arrange your meeting.

0: The Showman Studio presents Shri Ram Leela, a grand divine cultural show, 18 सितंबर को Big Theatre Hayes में. एक ही दिन में दो grand shows, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर Big Theatre Hayes. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
3: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: Look, there's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
9: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
8: Conditions apply. See online for details.
10: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
11: मैं हूँ नीसा नासिर. लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.

0: कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें 90s की फिल्म फरेब से लिया था ये गाना। और आज की यादें में आप 90s के शायद कुछ या फिर कहूँ 80s और लेट 70s के ढेर सारे गाने सुन पाएंगे, क्योंकि आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं यादें में, उनका नाम है राजेश रोशन। जी हाँ, नहीं राकेश रोशन, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, दोनों भाइयों ने बिल्कुल एक जैसा नाम रख लिया है। आज मैं बात करने वाली हूँ राकेश रोशन को, जो हीरो बनकर फिल्मों में आए हैं, तो आज उन्हें याद करेंगे यादें में। और इसके अलावा आपके मैसेजेस तो लगातार मिलते ही जा रहे हैं। थैंक यू गुरुदेव गांजा, कहते आज तो खाने पीने की बातें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आज, क्योंकि कल तो फास्ट था तो मैंने मना किया था और आप सब ने मेरी बात भी मानी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज आपने समोसे की फ़ोटो भेज दी है, तो क्या बात है, अब समोसे तो सभी को पसंद होते हैं। और आज 5 सितंबर है, वर्ल्ड समोसा डे भी है, तो बिल्कुल समोसे की फ़ोटो आप आज भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज के प्रोग्राम में, यानी कि सेकंड वाले आवर में, यादें में हम याद करेंगे आज किसको, राकेश रोशन को। यस, राकेश रोशन को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.6 Bharatiya Rupai.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Leica
3: Gold, officially London's number one Asian retro music station.
0: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.

0: वाटर माइक्रोवेव.
1: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
2: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
3: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
2: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: Pat.
7: Have you tried down the road?
8: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
10: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर. सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा.
11: नाम है तेरा.
10: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें. इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208426078 पर कॉल करें. जय श्री राम.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
15: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Laika Gold.

0: किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, म्यूजिक बाय राजेश रोशन और फिल्म बाय राकेश रोशन, यानी कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को कमाल की फिल्में दी हैं, कमाल का म्यूजिक दिया है। और हम जानते हैं कि इनके पिता श्री रोशन एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने भी बहुत खूबसूरत म्यूजिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। तो अगर ये कहूँगी कि इस परिवार का कॉन्ट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और देखिए, ऋतिक रोशन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं फिल्मों में। लेकिन आज हम राकेश रोशन की बात कर रहे हैं, जो फिल्मों में तो पहले हीरो बनकर आए, और आप सब जानते हो शायद कि हीरो बनना इनकी चाहत थी या नहीं, लेकिन मजबूरी बहुत थी, क्योंकि परिवार में इतनी गरीबी थी कि घर चलाने के लिए क्या किया जाए। और इनका कहना था कि उन्हें कुछ और ज़्यादा आता नहीं था, क्योंकि फादर म्यूज़िक डायरेक्टर थे और घर में फिल्मों से ही कनेक्शंस थे, फिल्म से जुड़े लोगों को ही ये जानते थे। और जब सबको पता चला कि रोशन जी नहीं रहे और घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब इतने बड़े नहीं हैं, टीनेजर बच्चे हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा, और राकेश रोशन घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने जाकर सबसे कहा कि जो भी काम हो मुझे दीजिए, मुझे अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाना है, चाहे वो हीरो का हो, चाहे हीरो का नहीं हो, चाहे छोटा सा रोल हो, चाहे विलन का रोल हो, कुछ भी हो, मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों का, अपने भाइयों का, अपनी माँ का पेट पाल सकूँ। और इस तरह से राकेश रोशन ने फिल्मों में एंट्री ली, और उस समय इन्हें शायद नहीं पता था कि आगे जाकर ये इतने बड़े हो जाएंगे कि आज हम देखिए यादें में इन्हें याद करेंगे, और ये कईयों के फेवरेट हीरो होंगे, कईयों के फेवरेट डायरेक्टर होंगे, और कई लोगों के ये फेवरेट ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में हमारी इंडस्ट्री को दी। चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना इनकी फिल्मों का सुनवाती हूँ, क्योंकि आज यादें में हम राकेश रोशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि गलती से अगर राकेश की बजाय राजेश बोल जाऊं तो समझ लेना कि मैं राकेश रोशन की बात कर रही हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
12: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
13: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-6333 or visit mantraholidays.co.uk.
14: It's this weekend, the NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
15: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par, DAB Digital Radio par, Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
14: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बहुत ही सुंदर गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और आज हम बातें कर रहे हैं राकेश रोशन के बारे में और ये गाना उनकी फिल्म खट्टा मीठा से लिया था। हम सब जानते ही हैं कि राकेश रोशन को लेटर के से कितना प्यार है और जानते हैं ये प्यार क्यों हुआ। दरअसल शुरुआती दिनों की कुछ फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं, मेहनत करने के बाद भी फिल्में नहीं चली और जब इन्होंने आखिरी फिल्म बनाई खुद गर्ज और सोचा कि अगर ये नहीं चली तो मैं इसके बाद फिल्में नहीं करूंगा और उस फिल्म का नाम कैसे था बस फिर किया था, इसे कहते हैं ना अंधविश्वास। उन्हें लगा कि भाई कैसे अगर मैं लेटर से फिल्में बनाऊँगा तो मेरी फिल्में हिट होंगी। और ये उन्हें किसी शुभ चिंतक ने सलाह दी थी कि अपनी फिल्मों का नाम के अक्षर से शुरू करें और उसके बाद तो उन्होंने जो भी फिल्में बनाई कमाल ही हो गया, सारी की सारी फिल्में हिट होती चली गई। लेकिन अब मैं आपको जिस फिल्म का गीत सुनाने वाली हूँ उसका नाम के से नहीं शुरू है वो फिल्म पी से शुरू है। पराया धन है फिल्म का नाम जिसमें उनके साथ काम किया था खूबसूरत हेमा मालिनी ने।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जी बर्मन का म्यूजिक था इस फिल्म में और राकेश रोशन और हेमा मालिनी हीरो हीरोइन थे और आज राकेश रोशन को ही फिल्मों में यादें में हम याद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब राकेश रोशन अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च करने जा रहे थे तो उनके मन में एक डर सता रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें एज ए हीरो एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं ऐसा ही उनके बेटे के साथ ना हो। पूरी उन्होंने कोशिश की, राकेश रोशन को कहा पहले कि नहीं तुम हीरो की तरह तैयार होकर आओ, बॉडी वॉडी बनाओ, अपना लुक अच्छा करो और फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से लॉन्च करूँगा, क्योंकि वो जरा सी भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि अगर एक बार जनता ऋतिक रोशन को नकार देती तो फिर दोबारा उन्हें इस्टेब्लिश कर पाना राकेश रोशन के लिए बहुत मुश्किल होता। और कई लोगों ने उनसे कहा भी कि क्या तुम अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, तुम क्यों नहीं बड़े स्टार को लेते हो, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा, फिल्म नहीं चली तो। लेकिन राकेश रोशन ने कहा कि नहीं, मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगा अपने बेटे के लिए, क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर मेरी आगे की ज़िंदगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी, सफल हो जाएगी, आगे अच्छा काम हो पाएगा। और इसके चलते उन्होंने रिस्क लिया और देखिए उन्होंने जब अपने बेटे को लॉन्च किया तो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और तब उन्हें जाके तसल्ली हुई। नहीं तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसा साबित ना हो जाऊं और वो मुझे ये ना कहे कि आपने मेरे लिए फिल्म बनाई और देखिए मेरा करियर डूब गया। इस तरह की बात राकेश रोशन सुनना नहीं चाहते थे। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं कमाल की, गाने मैं आपको सुनवा रही हूँ और आप सबके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं कि ये गाने हमको पसंद आ रहे हैं। तो चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत बजने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तो आपको याद दिला दें कि द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जिसे आपके लिए लाए हैं NKN मीडिया वापस आ गया है आज और कल, यानी कि 5 और 6 सितंबर को एट लंदन हिल्टन पार्क लेन, जहां पर सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ रहे हैं, अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकरी। आप उनसे मिलना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, फ्री एंट्री है। रजिस्टर कीजिए एट nknpropertyexpo.com पर, आई रिपीट nknpropertyexpo.com पर, और उसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है लाइका रेडियो। और थोड़ी ही देर में हम आपकी बात भी कराएंगे उनसे जो हमारे साथी वहां पहुंचे हैं, आंखों देखा हाल कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है।
2: दिस इज रितु शर्मा।
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
2: Leica Extra Podcast Update.
0: तो याद दिला दे कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल, जिनसे बात की है रवि शर्मा ने। तो आप इसे सुन सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ जाकर।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: Leica Gold.
2: We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London. Leica.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
0: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
1: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
0: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: One performer.
2: Countless personalities.
1: A whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
6: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
7: Hi, this is Chitra Nivel Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
8: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208 951 0111.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
10: तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो है जिसे लेकर आए हैं NKN मीडिया, और आज और कल ये होने वाली है एट लंदन हिल्टन पार्क लेन में, और जहाँ पर हमारे कुछ साथी पहुँचे हुए हैं और हमने आपसे कहा था कि थोड़ी देर में उनसे बात करवाएंगे. तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं.
9: We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London.
10: हमारे बॉस राज बद्धन, आइए उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है. हेलो राज.
11: इतना लंबा डिले, व्हाट वाज हैपनिंग देयर? आपको याद नहीं कौन किससे आप बात कर रही हो?
10: अरे मुझे याद है, क्या कहूँ. बताइए क्या चल रहा है.
11: I'm so here at the Dubai Property.

0: तो ये थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें, और हृदय नाथ मंगेशकर का म्यूजिक था इस फिल्म में। राजेश खन्ना और रीना रॉय के साथ इस फिल्म में राकेश रोशन भी थे, जिन्हें आज की यादें में हम याद कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको हम याद दिलाते चलें कि मर्सिडीज बेंज वेंस की ओर से ये संदेश है, जिसे हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से आपके सामने पेश किया जा रहा है। जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब कुछ उस पर निर्भर करता है। और इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके लिए लाया है अप टाइम प्रॉमिस। आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज है, जैसे कि 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी कि आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब आपको अब एक ही जगह मिलेगा। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू होंगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.15। आज भारतीय करेंसी अपडेट बताना है क्या कर रही है तू। आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तान रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £105.6 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Ye hai Laika Gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Laika Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
8: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
9: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
2: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
8: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold Greater London. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: ये था नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में गाना, और इस फिल्म को बनाया था राकेश रोशन ने। हालांकि उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया था, इसमें उन्होंने रेखा को मेन लीड रोल दिया था और साथ में थे कबीर बेदी, सोनू वालिया। और रेखा जी को उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम दिया है। उनके लिए उन्होंने एक खूबसूरत फिल्म बनाई थी, वो राकेश रोशन उसमें थे, लेकिन रेखा को उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने क्रिश फिल्म बनाई थी कोई मिल गया, उसमें भी उन्होंने रेखा को चांस दिया था। यानी रेखा जी के साथ राकेश रोशन का जो ट्यूनिंग है बड़ा अच्छा बैठता है, और अच्छी अच्छी फिल्में दोनों ने साथ में हमें दी हैं। तो आज की यादें में हमने राकेश रोशन को, नॉट राजेश रोशन, राकेश रोशन को याद किया है। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं कि आपने आज की यादें को पसंद किया है। सो थैंक यू हंसा जी, थैंक यू विजय गुडूरी जी, थैंक यू साक्षी, ये गाना आपको पसंद आया, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। और हमारी संध्या भावसर तो ट्रेन में है और प्रोग्राम सुन रही हैं, साथ ही साथ उनकी बिटिया रानी भी साथ में है, वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं, तो आप दोनों को भी वेलकम कह देते हैं, है ना गुरुदेव गांजा। रानी जी कहती हैं कि बहुत ही थैंक यू, आप आज राकेश रोशन को यादें में लेकर आई, और वजाहत आपका भी कहना है कि नाइस शो, सो थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू फारूक जी, थैंक यू दिनेश पोपट जी, थैंक यू गिरीश जी, स्मिता पटेल जी, यानी कि जितने भी साथी मेरा साथ दे रहे हैं सभी का थैंक यू कह देती हूँ। और अब मिलती हूँ आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक भी सुनाऊंगी जिसमें होंगे गाने सलिल चौधरी के, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। मिलते हैं आपसे।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. A group of demonstrators dressed in black and wearing balaclavas have stopped traffic going in and out of the port of Dover. Traffic along the A20 has been brought to a standstill, disrupting the movement of lorries and holidaymakers. While the nature of the protests not been confirmed, one local councillor, Chris Vinson, thinks it relates to illegal migration. Our correspondent Amelia Harper has the latest.
3: The Port of Dover has released a statement to say that there is an ongoing public order incident affecting all routes in and out of Dover in Kent.
2: Police in Kent say they're engaging with protesters. The police have shot down suggestions from Reform UK that yesterday's delay to Nigel Farage's speech was because they had intervened. The party's leaders expected to speak later, as plans are due to be revealed which would see a raise in the income tax threshold if elected to government. It's understood Donald Trump's US envoys have arrived in Moscow. The president's previously said they have a proposal to end the war following reports of strikes in Ukraine overnight. Nearly 34,000 tooth extractions administered among children in England last year were due to severe tooth decay. 600,000 school pupils have been targeted with teeth cleaning lessons. Newcastle's new head coach will look to extend his unbeaten start this lunchtime. Matthias Yeisler's side is hosting Bournemouth, having already picked up 4 points with the draw against Liverpool and a win over Spurs. They're currently seventh in the Premier League, but the boss isn't getting carried away.
4: The start was great, but we all were sitting a couple of weeks together as well, and everything looked a bit different. So we see it again, really realistic. We know what to do. We know where we can develop. But again, we also know which challenges will be ahead of us.
2: As the weather heats up in some areas of the country, there's a warning for people to wear sun cream. Figures suggest around 40% of UK adults admit to getting sunburnt last year. Cancer Research UK expects that to rise after the recent record-breaking heatwave. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: Ah, claim approved. Direct Line's ready to send my new laptop within 2 hours.
6: That's how it's done. Imagine if everything was that easy.
5: Like teaching little Johnny to play his recorder.
6: Oh my. Oh, he's a musical genius.
7: Direct Line. That's how it's done.
8: Theft claims from your home or theft and loss claims with personal possessions cover. Cover limits apply.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: गुड आफ्टरनून, आइए बात कर लेते हैं मौसम की। और आज मौसम ड्राई रहने वाला है, बारिश के चांसेस नहीं है और अच्छी सनशाइन भी देखने को मिल सकती है। लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्रीज रहेगा, मैनचेस्टर में 19 एंड मिडलैंड्स में 21 डिग्रीज के आसपास।
9: for special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
10: ये है लाइका गोल्ड
0: ऋतु शर्मा। यस, आपने सही सुना, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ और आप सुन रहे हैं द ऋतु शर्मा शो। प्रोग्राम का लास्ट आवर है और इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स के साथ साथ खेलते हैं हम थ्री वर्ड गेम भी। लेकिन सबसे पहले अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है आपका इस शो में। गुड आफ्टरनून
10: लाइका गोल्ड। Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
11: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
12: Travel Hub.
11: At all protected.
10: Leica. Ritu Sharma live on Leica Gold, Greater London.

0: लीजिए, तो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हुआ है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आवर में हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम, और मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी, तो वो बजेंगे. लेकिन पहले बात कर ले आज के थ्री वर्ड्स गेम की. तैयार हैं आप? तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ये जो तीन वर्ड्स हैं वो बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैं लेती हूँ और थोड़ा हिंट्स भी देती हूँ, और आपको बताना होता है कि गाना कौन सा है. तैयार है? चलिए. पहला वर्ड है जीवन, दूसरा है जीने, और तीसरा है गीत. बहुत पॉपुलर गाना है. जीवन, जीने, गीत. रफ़ी साहब की आवाज़ है. 1969 में आई थी ये फिल्म, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूज़िक है. सोचिए सोचिए कौन सा है ये गाना, और अगर आपको पता चल जाता है तो भेज दीजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ वर्ड्स. पहला वर्ड है जीवन, दूसरा है जीने, और तीसरा वर्ड है गीत. मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है. 1969 की फिल्म है. लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक है. कौन सा है ये गाना बताइए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.15 भारतीय रुपए. लेकिन याद रखिए ट्रांसफर होगा via SBI branch online और by Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई होंगी.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Pot noodle, bachelor's pasta and sauce or super noodles? Yes. 97 aisles? No. Want value without the big shop faff? Pop to Co-op, get 3 for £3 on snack meals. For even more value, download our app. Co-op, owned by you, right by you.
3: Ends 29th of September 26. Selected products subject to availability. Co-op group stores only. Full terms at co-op.co.uk/pack18.
1: This is Like a Gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220+ destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
8: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
9: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo.
8: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.

0: लता जी की आवाज में हिमालय की गोद फिल्म में था ये गाना, जिस पे थिरक रही है माला सिन्हा। और आप जानते हैं माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और इस गाने को आप सबने पसंद किया है।
1: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: So thank you Gusharan ji, Rajneesh ji, program aap sun rahe hain aur geeton ko pasand kar rahe hain aur mujhe kya chahiye? Thank you. Aur iske alawa 3 words game chal raha hai jisme aap apne answer mujhe bhijwate ja rahe hain. कुछ के आंसर सही हैं और कुछ ने गलत बताए हैं, तो अब मैं कैसे बताऊं, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने सही पहचाना है उनका नाम क्या है। और गाना बहुत ही आसान है, आप सुनेंगे तो कहेंगे उत तरीकी ये गाना था आमिर खान के स्टाइल में। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज सलिल चौधरी की पुण्यतिथि है, आज ही के दिन वो उस दुनिया को छोड़कर गए थे काफ़ी छोटी सी एज में, जब वो सिर्फ 69 ईयर्स के थे, और ये हुआ था 1995 में। तो आज उनकी ही फिल्मों के दो गाने ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स में सुनवाऊँगी। पहला गाना उनकी सुपरहिट फिल्म उसने कहा था से लिया है, जिसमें आवाज़ है तलत महमूद और लता मंगेशकर की।

0: सनत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये गाना फिल्म उसने कहा था से लिया था, जिसमें सुनील दत्त और नंदा थे और इन गीतों को लिखा था शैलेंद्र ने और म्यूजिक था सलील चौधरी का, जिनकी की आज है पुण्यतिथि। अगला जो गाना है वो भी मैंने उन्हीं की फिल्म से लिया था।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो अगला गाना भी उन्हीं की फिल्म से है जिसे मैं बजाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ।
1: रिची शर्मा on Like a Gold.
0: आपको बताते चलें कि भाई अगर आप बिग बॉस के शौकीन हैं तो बिग बॉस का सीजन 20th शुरू हो रहा है कल से, जिसे एक बार फिर से होस्ट करने जा रहे हैं सलमान खान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 9:30 बजे से कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ ये जियो स्टार पर भी दिखाया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जियो स्टार अब लंदन में आ गया है और लाइव स्ट्रीम भी करेगा, 24/7 फीड भी दिखाएगा बिग बॉस की, यानी कि एवरी एपिसोड तो आप देख ही सकते हैं और 24/7 कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं बिग बॉस हाउस के अंदर। तो जियो स्टार आपको बता दें इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा।
3: Track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लीजिए आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का ये था दूसरा गाना जिसे आपने सभी ने पसंद किया और आज हमने सलील चौधरी के म्यूजिक पर आपको दोनों गाने सुनवाए क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। एंड अमिता जी, भारती जी, विजय गुडूरी जी, रजिंदर राज जी, जासू जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं जिन्होंने इन सब गीतों को पसंद किया है और थ्री वर्ड्स गेम भी चल रहा है जिसमें साथियों ने सही सही जवाब दिए हैं और उनके नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप राजा और दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो पर पहुंचे हुए, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं वहां का हाल कैसा है। हाय दीप, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू रितु?
0: आई एम नॉट टू बैड। और बताइए वहां पर क्या हो रहा है?
1: It is amazing here. Ritu, you must come if you can make it. There's lots of people here. There's lots of exhibitors coming. Anything to do with Dubai, absolutely the place to be. Honestly, there's information about Dubai, properties about Dubai. We've got Nargis Fakhri here. We've got so many people. It's really worth coming down.
0: थैंक यू दीप, कोशिश करूंगी कि मैं ज़रूर आऊं और जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगी कि आप भी वहां जाइए और दीप से भी, राज से भी और नरगिस फाखरी से भी मिलकर आइए, है ना?
1: Absolutely, in the London Hilton Park Lane. Worth any information you want to know about Dubai, come on down.
0: Okay, thank you दीप, thanks.
1: Thank you Ritu.
0: Bye-bye.
1: Take care, bye.
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: और हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो आप साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और अब बताते चलूं कि हमारे किन साथियों ने आज सही सही गाने को पहचाना है। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है स्वाति बेस बॉर्डर से, आपने गीत को सही पहचान लिया है। नरेन पटेल जी, उल्लास विजय गुनोवा जी, विजय गुडोरी जी, अरवा नॉर्थ हेल्थ में प्रोग्राम सुन रही हैं, आपका जवाब सही है। निम्मी जी, विनोद जी, तोची जी, मनीषा शाह, कुकी किरण जी हैरो से, अयूब चौहान जी, अमर जी, गीता हर्ष जोशी, गुरुशरण जी, उषा खोड़ा, करसन पिंडोरिया जी, गिरीश जी भारत से, दिव्या जी हैरो से और साक्षी, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। और जैस्मीन मुझसे पूछती हैं What you having for lunch after show? Oh, ये तो surprise होगा, मुझे खुद नहीं पता मैं घर जाके फ्रिज में से क्या निकालूंगी और क्या बनाऊंगी अभी कुछ आइडिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना है वो बस बजाने वाली हूँ आपसे थोड़ी ही देर में।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Pot noodle, bachelor's pasta and sauce or super noodles? Yes. 97 aisles? No. Want value without the big shop faff? Pop to Co-op, get 3 for £3 on snack meals. For even more value, download our app. Co-op. Owned by you, right by you.
4: Ends 29th of September 26. Selected products subject to availability. Co-op group stores only. Full terms at co-op.co.uk/back-to-routine.
5: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
2: We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on

0: एंड किचन फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
1: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वटवुड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
2: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ
3: अपना बनाया तेन
2: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ट टाउन हॉल में टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20 वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216 टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फर्ट

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Have you noticed the way fans shout at football matches?
9: Oh, wake up!
8: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
10: Hi, this is Arbaaz Khan.
11: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
12: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
13: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
16: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे.

0: सुंदर गाना जीने की राह फिल्म का गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और ये था हमारे आज के सवाल वाला गाना जितेंद्र और तनुजा और संजीव कुमार की फिल्म। अब आप सब लोग को पता चल गया होगा कि आज का गाना कौन सा था। कुछ साथियों ने जवाब सही नहीं दिया था लेकिन कोई बात नहीं, फिकर नॉट, ये गेम तो हम जस्ट फॉर फन खेलते हैं। और अब बस क्या जाने की बेला आने ही वाली है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Ye hai Leica Gold. Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 पाउंड आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.63 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: जी हाँ बिल्कुल, अब हो गए हैं 12:50 और अगला गीत आप सबको ले जाने वाला है न्यूज तक। न्यूज के उस पार आपकी मुलाकात होगी अनुराग से। लाइका गोल पर आनंदी होंगी लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर एंड फजीला आपका साथ देंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर। लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच ढेर सारे मैसेज भिजवाने के लिए। थैंक यू असद जी, आपका मैसेज मुझे मिला है, आप शो को एंजॉय करते हैं और आपने गाना सजेस्ट किया है। मैं कोशिश करूंगी कि वो गाना आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बजाऊं। पहले तो मैं उसे चेक करूंगी वो हमारे पास है या नहीं, और अगर होगा तो ज़रूर आपको सुनवाएंगे। एंड थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपको भी जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। आई एम श्योर कल जन्माष्टमी का त्यौहार आप सबने खूब धूमधाम से मनाया होगा। तो बस कल तक के लिए आप सबसे अब विदा लेने का समय हो गया है। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बस जब भी समय मिले हमें सुनते रहिए। कल तक के लिए आप सभी को मेरी बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
4: ये है Leica Gold.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
8: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel, at all protected.
14: The wait is finally over.
15: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
14: Mirzapur is coming to the big screen.
16: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
14: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
17: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
14: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
18: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
19: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
20: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
19: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
20: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
21: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
20: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
22: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઈંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
23: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
24: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
23: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
24: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
25: Up next, Golden Rock with Unrock on Like a Gold.

0: ओम शांति ओम। किशोरदा की आवाज में कर्ज फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के गानों के बोल लिखे थे। तालियों के साथ स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला, मैं हूं आपके साथ अनुराग। और थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय NKN मीडिया, और वहाँ पर हमारे सहयोगी, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, आप सबके चाहते हैं नीरज वहाँ पर हैं। थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कर्ज फिल्म की। फ्लॉप से, एक फ्लॉप फिल्म से मास्टरपीस बनने की अनोखी कहानी है इस फिल्म की। 27 जून 1980 को फिल्म रिलीज हुई थी। कर्ज भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक पुनर्जन्म और बदले से भरी हुई कहानी थी। बड़ा ही बेहतरीन म्यूजिक जैसा कि आपने सुना, लेकिन ये फिल्म अपने शुरुआती दौर में बहुत कुछ अच्छा बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई और इसे शुरुआती तौर पर एक फ्लॉप फिल्म ही माना गया। जब कर्ज सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, और इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि ठीक उसी समय फिरोज खान साहब की मोस्ट स्टाइलिश एक्टर ऑफ बॉलीवुड, उनकी फिल्म कुर्बानी रिलीज हुई थी और जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र यानी कि एक तरफा कब्जा कर रखा था। ऋषि कपूर के लिए फिल्म उम्मीदों से बेहतर नहीं कर पाई। फिल्म की जो फेलियर रहा उससे इतना ज़्यादा सदमा उन्हें लगा कि वो डिप्रेशन में भी चले गए थे, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये बात भी एडमिट की थी कि काफ़ी दिनों तक उन्हें कैमरे को फेस करने में भी दिक्कत होने लगी थी। वो घबराने लगे थे, कांपने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई और बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन जब ये फिल्म टेलीविज़न पर सैटेलाइट के द्वारा हमारे आपके बीच में पहुंची, तो धीरे धीरे इस फिल्म को लोगों ने एक्सेप्ट किया और कहानी को समझा, गाने तो फिर सर चढ़कर बोले, और इसके बाद धीरे धीरे ऋषि साहब का भी कॉन्फिडेंस वापस आया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत के साथ आनंद बख्शी साहब ने क्या कमाल के गाने लिखे। आप सुन रहे हैं सुपर वीकेंड में अनुराग के साथ बहुत सारे गाने। थोड़ी देर में हम, जैसा कि हमने बताया कि हम नीरज के साथ जुड़ने वाले हैं, आपको बताएंगे दुबई एक्सपो के का सूरत हाल। अगला गीत फिलहाल आपको सुनाने जा रहे हैं रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताजमहल। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ एंड 15 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
3: Like our gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: Pat.
7: Have you tried down the road?
8: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
7: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
10: हे प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
7: Book now on diwalistory.com before they are gone.
2: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
11: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर बेक थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
12: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. A 24-hour line.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 8574-8410.
14: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
19: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
20: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB digital radio पर, Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे.
21: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: रफी साहब और लता जी की आवाज में ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। अब अगला गाना रफ्ता रफ्ता आपको हम सुनाते हैं किशोरदा की आवाज में।
3: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स।
4: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: जिंदा दिलों के लिए किशोर दा की आवाज में नीले नीले अंबर पर कलाकार फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत छोटे से अंतराल के बाद मिल रहे हैं और बड़ा ही प्यारा सा गाना बताएंगे। याद रखिए आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड बस अगले गीत के बाद, इसीलिए डोंट मिस इट, सुनते रहिए वीकेंड वाली पाठशाला।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
3: This is Leica Gold. We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London. Leica.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्ध आश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा।
7: नाम है तेरा।
6: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084-260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: अब जल्दी से बता देते हैं आपको LemFi के जरिए आपको इंडियन करेंसी में और बाकी कंट्रियों की करेंसी में क्या क्या मिलने वाला है. इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.77, अफगान अफगानी 1 पाउंड के बदले 88.53, पाकिस्तानी रुपीज 375.19, बांग्लादेशी टका 166, श्रीलंकन रुपीज 443.64 एंड 1 यूएस डॉलर 1.35.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £105.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: भाई डिस्को में जाएं, खाना खाएं, इश्क लड़ाएं, लेकिन इश्क लड़ाने से पहले अपने दिमाग की बत्ती भी जलाएं, क्योंकि आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड बताने का वक्त आ चुका है, और वो है कसम। याद रखिए, ओथ, कसम जिसे कहते हैं ना, वो है आज का गोल्डन वर्ड। इसलिए कसम से प्यारे प्यारे गीत हम तक पहुंचाइए, अपनी फरमाइश का पिटारा खोलिए और उसमें से अपनी पसंद के नगमे हम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। अगला गीत आशा दाई की आवाज में सुनते रहें।
1: ये है Like a Gold.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
7: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
8: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
10: दुबई इज कमिंग टू लंदन।
2: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर, स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो by NKN Media.
10: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
2: Special appearances by Chitranga Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
10: Hurry and register now
2: at nknpropertyexpo.com.
10: Your next investment could begin here.
2: Official radio partner, Leica Radio.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208 951 0111.
3: On Rug with Golden Rug.

0: सनम तेरी कसम किशोरदा की आवाज में 1982 में ये फिल्म आई थी और पंचमदा का कमाल का इस फिल्म के लिए संगीत था। फिल्म में नजर आए थे कमल साहब यानी कमल हसन और रीना रॉय जी। तो चलिए अब कसम से रिलेटेड है आज के सारे गाने और बहुत सारे गाने कसम से हम तक बहुत ही खूबसूरत पहुंचे हैं। जल्दी से नाम लेते हैं इस गाने को हम तक किसने पहुंचाया है। अनुसार राज रानी, अमित पटेल साहब और सुमित चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का ही पहला गाना हमने आपको गोल्डन राग की तरफ से यानी कि हमारी तरफ से सुनाया। फिल्म का नाम था जानवर। अलका याग्निक जी और उदित नारायण साहब की उस गीत में आवाज़ थी। बड़ा ही प्यारा गाना है। और अगला गीत किशोरदा और लता जी की आवाज़ में आने वाला है। फिल्म का नाम रखेंगे हम सरप्राइज। किसने भेजा है वो भी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। आज का गोल्डन बर्ड कसम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI Yono mobile app के जरिए आपको इंडियन करेंसी में आज मिल सकते हैं 127 rupees and 15 paise। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करें।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/aldi price match.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: हाँ, मैंने कसम ली किशोर दा और लता जी की आवाज में तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत एसडी बर्मन साहब का इस फिल्म के लिए था खूबसूरत संगीत. और ये गाना हम तक पहुंचा है उल्ला जी, विजय गोदोरे, जगदीश जी, अमर साहब और मिसेज सुदेश टेके. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गीत को इस प्रोग्राम में शामिल कराने के लिए, क्योंकि आज का गोल्डन बर्ड है कसम. और कसम से सबके दिमाग की बत्ती जली और साथ साथ प्यारे प्यारे गीत हम तक पहुंचे. अगला गाना अगेन किशोरदा और लता जी की आवाज में.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: भाई मानना पड़ेगा गुलशन बावरा साहब ने क्या गाने के गीत बोल लिखे हैं और पंचम दा आड़ी बर्मन साहब ने बड़ा ही प्यारा सधा हुआ म्यूजिक संगीत दिया इस फिल्म के लिए। किशोरदा लता जी की आवाज़ में कस्मे वादे फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया था अमित जी, जया फ्रॉम ल्यूटन एंड प्रज्ञा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: Like a gold on rag with golden rag.

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे।

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय
2: ये गाना सुनते ही रियलाइज होता है कि बड़ा चुलबुला सा नटखट सा ये गीत है, आशा ताई और रफी साहब की आवाज में तुमसा नहीं देखा, विंटेज गोल्ड वाला ये गीत। इस तरह के गाने अगर आपको सुनने हैं तो सैंडी जी की शरण में जाएं और विंटेज गोल्ड की महफिल को सजाएं। एनीवेज ये गीत हम तक पहुंचाया था बहुत सारे लोगों ने, भाई राजेंद्र सिंह कालरा साहब, फरीदा गुलाम अली, गिरीश पंजवानी, स्वीटी कालरा जी, पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए। और इससे पहले हमने आपको तेरे मेरे सपने फिल्म का जो गीत सुनाया था किशोरदा लता जी की आवाज़ में, एक नाम लेना उसमें रह गया था उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मीना शाह जी, आपने भी इस गीत को हम तक पहुंचाया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
4: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: साउथ हॉल ट्रेवल इट्स नोन फॉर कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल को आज ही, नंबर है 0208574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल इज अटोल प्रोटेक्टेड।
4: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
5: ये है Like a Gold.
6: Like a Gold.
4: Like a Extra podcast update.
2: Like a Extra podcast update. Episode number 32. Title है मोहम्मद वकील स्पेशल, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी, हमारे चिंतन वाले रवि जी। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
4: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
7: नीड एनीथिंग फ्रॉम टेस्को? हाउ अबाउट हंड्रेड्स ऑफ द टेस्को प्रोडक्ट्स यू नो एंड लव, प्राइस मैच टू Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
8: Ye hai
5: Like a Gold.
9: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
10: Travel Hub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
10: Visit travelhubworld.com.
11: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवन दान तथा टू मेरी जान, एक्स्ट्रा लाइफ, एक्स्ट्रा मौका मतलब एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्स्ट्रा धोखा, स्ट्रीमिंग फ्रॉम 6 सितंबर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स।
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड पोटैटो चिप्स नाउ।
14: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
15: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena, Wembley on the 27th of September.
16: Hey, Prasann Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
15: Book now on diwalistory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Deirdre, look. It's the Bottomleys this time, sliding across their car bonnet.
18: Leave them be, Philip. They just claim confident.
17: Claim confident?
18: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
17: Deirdre? Deirdre? Come back here.
19: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
20: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
21: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
20: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
21: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
22: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
2: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
4: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
5: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम Leica गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में आजाद फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सपना जी फ्रॉम अक्सब्रिज सुनील जी और साक्षी जी ने पहुंचाया हम तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता जी और मुकेश साहब की आवाज में, एक बार फिर से विंड इज गोल्ड।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 127.74 अफगान अफगानी 88.6 पाकिस्तानी रुपीस 375.15 बांग्लादेशी टका 166.27 श्रीलंकन रुपीस 443.61 and $1 $1.35.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Aap sun rahe hain Golden Rag Anurag ke saath.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £105.63 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: भाई ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा कमाल का, अशताई और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में सागर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। बड़े बेचारे बेचारे से लगे थे इस फिल्म में, खासतौर पे इस सॉन्ग में कमल हसन साहब, और ऋषि साहब का जो कन्फ्यूजन था वो भी बड़ा ही निखर कर आया था इस फिल्म में, इस गाने पर खासतौर पर। अब वक्त आ गया दिल की बत्ती जलाने का भाई। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं गोल्डन राग के आज के तीन ऑप्शन, जो कि होने वाले हैं बेहद ही मुश्किल। क्यों होने वाले हैं मुश्किल? क्योंकि ये तीनों गाने हैं मुकेश साहब की आवाज़ में। आज कोई जन्मदिन नहीं है, आज कोई डेथ एनिवर्सरी नहीं है, बस ऐसे ही तीन गाने हमने चुने आपका प्यार टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कितना प्यार उड़ेलते हैं आप, उमड़ता है आपके दिल में इन तीनों गीतों को लेकर। किसे चुनते हैं, किसे बनाते हैं आज आप आज का गोल्डन राग? कायदे प्लस कानून ये है कि तीन ऑप्शंस होंगे गाने के, ए बी एंड सी, जिनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चुनना है, उसे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर वोट की तरह कास्ट करना है, और जिस ऑप्शन को लेके सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह बनेगा आज का गोल्डन राग। तो ध्यान से सुनिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी में आ पाए, फिल्म का नाम छलिया। ऑप्शन बी, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, फिल्म का नाम है गोरा और काला। और ऑप्शन सी है, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, फ्रॉम द फिल्म ब्लफ मास्टर। इसीलिए कह रहा हूँ बड़ा ही ब्लफ होने वाला है आज के तीन गानों में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए जिंदगी में आ पाए फ्रॉम द फिल्म छलिया, ऑप्शन बी धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, लेकिन आप जोर से बोलिए, फिल्म का नाम है गोरा और काला। ऑप्शन सी है, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, फ्रॉम द फिल्म ब्लफ मास्टर। वोटिंग लाइन हो चुकी है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। अगला गीत गीता दत्त जी और रफी साहब की आवाज में, हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक यानी कि माला सिन्हा जी की ऊपर फिल्म आ गया, ये गाना सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन करेंसी में, भारतीय मुद्रा में 127 रुपीज एंड 15 पैसे। आप अपने पैसों को बाय ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: The wait is finally over.
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
7: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
4: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। Mirzapur द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
6: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: Dreaming of paradise? Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
9: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
9: At all protected.
8: London, get ready for an unforgettable night.
9: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
8: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
9: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
8: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
9: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
8: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
10: Two businesses.
11: Same town.
10: Same service.
11: One appears on page one of Google.
10: The other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question.
10: When your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
13: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
14: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
15: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
14: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
15: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
14: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
15: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
14: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
15: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA.
16: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस Make every day grand.
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
17: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
19: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
20: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
21: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
22: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: गीता दत्त जी और मुकेश साहब की आवाज, प्यासा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गुण राग के तीनों ऑप्शंस। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो मिस कर चुके हैं आज के गुण राग के तीनों ऑप्शंस। कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पर आपके लिए मौजूद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए है जिंदगी में आप आए, फिल्म का नाम है छलिया। ऑप्शन बी है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, फिल्म का नाम है गोरा और काला। एंड ऑप्शन सी है सोचा था प्यार हम न करेंगे, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर। वोटिंग लाइन्स ओपन हैं, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। अगला गीत किशोर दा और लता जी की आवाज में।
1: This is like a gold feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: चुपके से दिल दे दे
4: नहीं ते
3: नहीं ते

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और साथ ही साथ बिग बॉस के दीवानों के लिए खबर है भाई, 20th सीजन जो है इस बार का बिग बॉस का वापस लौटा है, होस्टेड बाय सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग खान इस बार भी होस्ट होंगे। एवरीडे 9:30 PM कलर्स टीवी पर आप इसे देख पाएंगे। इसके अलावा जियो हॉट स्टार पर भी आप इसे देख पाएंगे। शुरुआत हो रही है संडे 6 सितंबर से। पहली बार जियो स्टार स्ट्रीम करेगा हर एक एपिसोड लाइव 24/7 फीड बिग बॉस की 20 आवर्स में। जियो स्टार हॉट स्टार पर आप इसे देख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा स्काई टीवी पर।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें अगला गाना शाम तक पहुंचाने के लिए, सुबह से शाम तक के सफर को याद दिलाने के लिए।
3: Like a gold.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsored by Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: भाई चलते चलते शो के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। मैंने प्यार किया फिल्म का एक गीत सुना दिया है आपको और अगला झुकाना आने वाला है ब्रेक के बाद। उसके बाद बंद हो जाएंगी आज की वोटिंग लाइंस, इसलिए आखिरी है मौका आप सबके लिए। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला और कास्ट करते रहें अपने वोट्स।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Like a Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at LaikaRadio.com.
3: Time's flying by, so this autumn, let's slow things down. Let's savour the moment. It's the perfect time to discover a new autumn favourite. Because the Maple Hazel range has returned to Costa Coffee, transforming your favourite coffee into a true taste of autumn. Celebrate the season and embrace your autumn glow with the Maple Hazel range. Pick up one today from your nearest Costa Coffee store while stocks last. Costa Coffee, made with heart.
4: Ye hai.
5: Like a Gold
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.
8: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
9: द बॉय इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ, कोई पता चला?
15: गुरु गुरु,
16: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
15: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
16: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
14: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
17: टू बुक कॉल 0208-514-5400 online at Eventbrite.
18: Exclusive radio partner Leica Radio Network.

0: नाचे किशोर कुमार बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम
1: इस कहानी को और इस गाने के बोल पर किशोर दाग ने जो तंज आखिरी में कसा है वो उनका उस दौर का वाकया है जब इनकम टैक्स के चक्कर में किशोर दाग बड़े परेशान हुआ करते थे। लेकिन अब आपको बता दें वोटिंग लाइन्स हो चुकी है, बन चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.77 अफगानी 87.68 पाकिस्तानी रुपीस 375 बांग्लादेशी टका 100

0: शम्मी कपूर और सायरा बानो स्टारर फिल्म ब्लफ मास्टर का गीत आपने बनाया है आज, इसको आज का गोल्डन राग। कल्याण जी आनंद जी का खूबसूरत सा संगीत और कमाल का ये गाना मुकेश साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। जल्दी से लेते हैं नाम, किसने दिया है इस गाने को अपना कीमती वोट। हालांकि बहुत माइन्यूट सा, बहुत छोटा सा अंतर रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, वही गोल्डन राग। हंसा बोरा जी, मनोहर जी, जया जी फ्रॉम ल्यूटन, महेंद्र पटेल साहब, रानी सुनाही, निर्मल क्रीट, अयूब चौहान साहब, संतोष जी, फरीदा, गुलाम अली जी, जगदीश जी, रोशनी जी, सचिन साहब, प्रकाश सूरी, सुमित कंचन, पंकज वर्मा एंड किरण फ्रॉम हैरो से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वैसे मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बी बड़े छोटे से अंतर से पीछे रह गया, लेकिन ये गाना जो आप लोगों ने चुना बड़ा ही कमाल का। अगला गीत किशोरदा की आवाज़ में मैं आपको सुनाऊंगा। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं, और थोड़ी ही देर में आपसे जुड़ेंगी सरिता जी। हो सकता है 5-6 मिनट वो लेट भी हो जाए, तो शुरुआत हो जाएगी और कल आपसे मुलाकात होगी मेरी सुपर संडे वाली महफिल में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, सुनते रहें लाइका नेटवर्क।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
7: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा।
3: नाम है तेरा।
2: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208426078 पर कॉल करें। जय श्री राम।
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
7: 4 beers, please, garçon!
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
9: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
10: Hey there, main hoon Bali Brambhat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: गुड आफ्टरनून, सरिता सबरवाल हाजिर है आपकी सेवा में आज के प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहे हैं, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई हूँ मैं। पहले दो गीत आपने सुने, कुछ कॉमन नहीं था, मींस कोई वर्ड नहीं था, यस, पर कुछ कॉमन था भी। कॉमन ये था कि आज विधु विनोद चोपड़ा अपना बर्थडे मना रहे हैं। इज़ इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर एंड एडिटर एज वेल। और इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले, नेशनल अवार्ड्स एंड 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड ही इज़ नोन फॉर डायरेक्टिंग फिल्म सच एज क्राइम ड्रामा परिंदा इन 1989, पेट्रियाटिक रोमांटिक ड्रामा 1942 अ लव स्टोरी, एंड मिशन कश्मीर इन 2000, देन 12th फेल 2023 की फिल्म, मुन्ना भाई की सीरीज इन्होंने ही बनाई, 3 Idiots इन्होंने बनाई, PK इन्होंने बनाई, एंड संजू भी इन्हीं के बैनर तले बनी थी। आज हम विधु विनोद चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1942 अ लव स्टोरी के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी। अनिल कपूर, मनीषा कोइराला इन लीड रोल थे, इनके साथ साथ फिल्म में अनुपम खेर थे, जैकी श्रॉफ थे, एंड इट वाज आल्सो द लास्ट फिल्म टू हैव इट्स म्यूजिक कंपोज बाय लेजेंडरी RD बर्मन साहब। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला था RD बर्मन साहब को उनके जाने के बाद, एट द 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड हिज फॉलोइंग टू फिल्म्स करीब एंड मिशन कश्मीर वर ऑल्सो क्रिटिकली कमर्शली सक्सेसफुल फिल्म थी। करीब भी बहुत प्यारी फिल्म थी जिसमें बॉबी देओल ने काम किया था, और दूसरा गीत मैंने बॉबी देओल की ही फिल्म करीब से चुना था। विधु विनोद जी ने इसे डायरेक्ट किया था एंड प्रोड्यूस भी किया था इसी फिल्म को। इसमें बॉबी देओल के साथ थी शबाना रजा एंड मौसमी चैटर्जी। बहुत प्यारी फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत अनु मलिक का था। और क्या आपने फीमेल वॉइस को पहचाना, चोरी चोरी जब नजरें मिली? अगर आपने पहचाना इस आवाज़ को तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अब सारे आवर में मैं विधु जी की फिल्मों के गीत इसलिए नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि इन्होंने ज़्यादा काम 1990s और उसके बाद 2000 ऑनवर्ड्स किया है। तो एक गीत और परिंदा का मैंने क्यों किया जो आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर, लेकिन आइए पहले ज़रा ये काम कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर इनके जरिए आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो इनटू द ब्रांच, ऑनलाइन कर सकते हैं, और SBI योनो मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और आज आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं मैक्सिमम 127 रुपीज़ एंड 15 पैसा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963 5757 and book your meeting. Danube 11, 11.
7: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
8: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भई बहुत प्यारा गीत था जिसे मैंने चुना था फिल्म नर्तकी से, और महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत बुलंद आवाज में आपने इस गीत को सुना. लेकिन अगला गीत भी जबरदस्त है और उसे मैंने चुना है मेरे महबूब फिल्म से. कौन सा गीत हो सकता है, सोचिए सोचिए. वैसे मैं प्ले करने जा रही हूँ राइट नाउ.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: क्या बात है, ब्यूटीफुल गाना. और आप में से कुछ मेरे साथियों ने पहचान लिया था कि कौन सा गीत हो सकता है, क्योंकि इन दोनों गीतों में एक वर्ड कॉमन रहा और अगले गीत में भी वही वर्ड सुनने को मिलेगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, बताने ये जा रही हूँ कि है इज अ मैसेज फ्रॉम मर्सिडीज बेंज वैन्स इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क. है इज अ नंबर दैट शुड मेक यू सिट अप. Vehicle downtime costs UK businesses an average of £1,172 per van per day. That's why Mercedes-Benz vans created the uptime promise from roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more. They have a range of advantages designed to keep your businesses moving. Search Mercedes-Benz vans. ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा. एंड टुडे एंड डिस्कवर देयर अप टाइम प्रॉमिस. लर्न मोर एट mbvans.co.uk/uptimepromise. और दूसरा मैसेज भी है एक और, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. आप जानते हैं कि आज हमारी टीम गई हुई है कहाँ पर, NKN, यस, प्रॉपर्टी एक्सपो जो एग्जीबिशन हो रही है. दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय NKN मीडिया इज़ बैक 5th and 6th September. आज वहाँ हो रहा है एट लंदन हिल्टन पार्क लेन में. आप भी जाना चाहें तो ज़रूर पहुँचेगा. फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट्स अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रगंधा सिंह एंड नरगिस फाखरी. फ्री एंट्री, रजिस्टर एट nknpropertiesexpo.com. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो.
0: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.
1: जी हाँ, नीदर्स अनदर सॉन्ग विदु विनोद चुप.

0: आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म परिंदा 1980 की फिल्म थी जिसे विधु विनोद चोपड़ा जी ने बनाया था और आज वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारक। तुमसे मिलकर ऐसा लगा तो हमें भी ऐसा लगता है कि अब कभी पिछड़ेंगे नहीं, हमेशा इसी तरह से आपकी सेवा में सरिता भी हाजिर रहेगी और आप भी मेरा साथ इसी तरह से इतना प्यार देते हुए निभाते रहेंगे। मेरे साथ ही जो बराबर मुझे मैसेजेस लिख कर भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच आपके प्यार के लिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Mel, something huge has landed.
3: The UFOs, it's all over the news.
2: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
3: I think that's why the aliens are here too.
2: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
5: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
8: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
9: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
8: Friends, family ya special night out, ise yaadgar बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
10: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208-507-7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heraldplastic.com। हेरल्ड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी, इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
12: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
13: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर बिग थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk।
10: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
14: Cutthroat Ke Khiladi.
15: Hey, gorgeous!
2: join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
14: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
2: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
14: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
1: LIKA Radio Network, proud hospitality partner.

0: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाए सुमन कल्याण पुण्य और एक यादगार गाना बन गया। और उम्मीद है कि इस गीत को आपने भी उतना ही इन्जॉय किया जितना मैंने। फिल्म का नाम था सूरज, 1966 की फिल्म थी। आइए अब आगे बढ़ लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today Indian rupees 127.74, Afghan Afghanis 87.57, Pakistani rupees 375.3, Bangladeshi taka 166.50, Sri Lankan rupees 443.54 and US dollars 1.35.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you

0: प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट आवर आपने इंजॉय किया, जिन मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया और अपने मैसेजेस भी मुझ तक पहुंचाते रहे, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी तो कल जरूर 4 बजे स्टार्ट कीजिएगा बैक टू बैक
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica.

0: फिल्म तवायफ से आपने सुना आशा जी की आवाज़ में गायक हुआ ये गीत। 1985 की फिल्म थी। बैक टू बैक दो गीत मैंने शामिल किए। पहला गीत था आदमी खिलौना है, इस फिल्म से जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। तो इसे शामिल करने की एक वजह ये भी थी कि ये फिल्म 3rd of September 1993 को रिलीज़ हुई थी। सो 3rd को मेरा शो नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि फिल्म के गीत अच्छे हैं तो क्यों ना प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो आदमी खिलौना है का गीत मैंने शामिल किया। इस फिल्म में जितेंद्र गोविंदा, मीनाक्षी सुशौत्री ने काम किया था, जी ओम प्रकाश साहब ने बनाई थी ये फिल्म, नदीम श्रवण का था संगीत। और दूसरा गीत मैंने जो चुना फिल्म तवायफ से, एक्चुअली ये फिल्म 6th of September यानी कि कल संडे को ये रिलीज़ हुई थी 1985। सो 85 के दो फिल्मों के नाम थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आज एक सुना देती हूँ और कल दूसरा सुना दूँगी। तो आज मैंने तवायफ फिल्म का ये गीत आप तक पहुँचाया। ऋषि कपूर एंड रति अग्निहोत्री ने इस फिल्म में काम किया था, साथ में पूनम ढिल्लन भी थी। बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी ये फिल्म एंड रवि जी का संगीत था, हसन कमाल ने लिखे थे सारे गीत इस फिल्म के। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी तो आपका स्वागत करती हूँ और आपको दो गीतों की मैं चॉइस दे रही हूँ। अब मैं कुछ एक गीत सलील चौधरी जी के कंपोज किए हुए प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो एक फिल्म थी अनोखी रात, जिसके गीत उन्होंने कंपोज किए थे। उन दो गीतों में से एक गीत आपने चुनना है। पहला गीत है ओरे ताल मिले नदी के जल में, ये गीत मुकेश जी ने गाया था। और दूसरा गीत है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। रेयरली ये गाने प्ले होते हैं, तो इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के करीब है मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ए ओरे ताल मिले नदी के जल में, एंड दूसरा है बी मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। जो भी आपके दिल के करीब है जल्दी से बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर SBI UK के जरिए पैसे आप इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आज आपके 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 127 रुपीस और 15 पैसा आपको मिल सकते हैं। और डोंट फॉरगेट कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं ब्रांच में जाके ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: Okay, offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Mel, something huge has landed.
3: The UFOs, it's all over the news.
2: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
3: I think that's why the aliens are here too.
2: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale event.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823। हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द फैमिली? इन टाइम्स ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ ओम Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests
5: carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
7: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
8: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
7: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? We'll be right back.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राइट भी सलील चौधरी जी की कंपोजिशन आपने सुनी और ज़्यादातर वोट्स इसी गीत को मिले थे। भारती जी, स्वीटी कालरा जी, निर्मल एन कीर्ति जी, हरीश रूडा जी, रानी इन स्लॉ, विजय गुदरे इन सटन, संतोष इन हैरो, मीना जी, भारती डीडी, रोशनी जी, फरजाना जी, हाना इंतशाब, ओम प्रकाश लाल जी एंड हिमांशु पटेल, आप सबका तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सलमा मेडस्टोन में सुन रही है, श्वेता जी, जयंत एंड मीना जी, उल्लास इन टोरंटो, दिव्या इन हैरो, हंसा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी लिस्ट है, आई एम सो सॉरी कि मैं सारे नाम नहीं ले पाऊँगी। और सलील चौधरी जी का संगीत अपने बहुत बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत प्यारे प्यारे गीत सुने होंगे। आज ही के दिन 1995 को सलील चौधरी जी इस दुनिया से विदा हुए थे, लेकिन संगीतकारों की उम्र उनकी सांसों से तय नहीं होती है। शाम ढलते ही कहीं से कहीं दूर जब दिन ढल जाए सुनाई देता है। पहली बार पहली बारिश में मन अपने आप भी कहने लगता है, ओ सजना बरखा बहार आए। गुनगुनाने लगते हैं हम अचानक से प्यारे प्यारे गीत, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। बहुत प्यारे प्यारे गीत इन्होंने कंपोज किए और मेरी कोशिश है कि कुछ एक गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूं और वो गीत आपके मन को भा जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. जी हाँ, आपकी सेवा में इस वक्त प्रोग्राम पेश कर रही हूँ और मेरा साथ रहेगा टिल 7 o'clock. जहाँ भी बैठे, जिस हाल में भी बैठे हैं, उम्मीद करती हूँ इन्जॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम को. राइट, लाइक का एक्स्ट्रा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ. पॉडकास्ट एपिसोड 32 आप देख सकते हैं, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी. इन दिस स्पेशल एपिसोड रवि शर्मा सिट्स डाउन विद द रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी. देखना चाहते हैं तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट देखिएगा, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
3: दिस इज लाइका गोल्ड, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Sarita Sabharwal. The biggest classics on Leica Gold. Oh,

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने एंजॉय किया। वैसे हर गीत के बाद मुझे यही मैसेज मिल रहा है, ओह दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, थैंक यू। अर्जुन जी आप भी अभी अभी आए हैं, एंड स्वीटी कालरा जी आपने कहा मेरा भी अनदर लाजवाब ट्रैक है ये और मेरा मनपसंद गीत है, थैंक यू। देशराज जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत बहुत सारी जानकारी भी आपको मालूम होती है और आप मुझ तक पहुँचाते हैं, थैंक यू एवर सो मच। एंड सरोज जी थैंक यू आपका भी। सुनील चौधरी जी के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि वो हमेशा स्टोरी को पहले सुनते थे, कैरेक्टर सुनते थे, और उसके बाद गीत को सुनते थे, फिर उसके लिरिक्स सुनते थे, फिर धुन बनाते थे। खेत में काम करता किसान, सड़क पर रिक्शा खींचता मजदूर, और बेहतर संसार को सपना देखता नौजवान उनके लिए फिल्मी कहानी के किरदार नहीं थे, वो स्वयं उस संसार का हिस्सा बन चुके थे, रह चुके थे हिस्सा। शायद इसलिए उनकी धुनों में बड़ी करुणा करुणा आपको लगेगी हमेशा, कि बड़ी सिंपल सी उनकी धुनें थी और थोड़ा सा दर्द छुपा हुआ था। उनके हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा भी किसी फिल्म जैसा ही है। वो एक ऐसे किसान की कहानी लिख रहे थे जिसकी ज़मीन छिन जाती है और जो रोज़ी कमाने को कलकत्ता जाकर रिक्शा खींचता है। ऋषिकेश मुखर्जी को कहानी पसंद आई और उन्होंने इसे बिमल रॉय तक पहुंचाया। सलील साहब ने बिमल रॉय को कहानी सुनाई और यही कहानी बनी, कौन सी फिल्म थी वो, दो बीघा ज़मीन। ऐसे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं सलील चौधरी जी के साथ। काश कि वक्त हो और मैं बहुत कुछ आपको सुनाऊँ बताऊँ उनके बारे में, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ज़रा जल्दी से ये भी बता दूं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान आ रहे हैं, TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान अट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ऑन हिज 30th डेथ एनिवर्सरी, वन डेट ओनली, संडेज 18th अप्रैल 2027। अभी से बुक कर लीजिए। O2 लंदन रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो, और वहीं लखवीर वडाली भी आ रहे हैं, पंजाबी लेजेंड लखवीर वडाली। फ्राइडे 16th अक्टूबर को क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ, एंड संडे को 18th अक्टूबर को इन एट ICC बर्मिंगम में परफॉर्म करने वाले हैं। अगला गीत इन मैसेजेस के बाद।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. The movie is starting. Turn off your phones.
2: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
3: Destinies? What destinies?
2: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
3: Alexander, phone off.
2: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
4: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays or Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
5: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
6: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833. Or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
9: Dubai is coming to London.
10: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
9: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities, and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
10: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaz Khan.
9: Hurry and register now
10: at nknpropertyexpo.com.
9: Your next investment could begin here.
10: Official radio partner, Leica Radio.
11: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: Jio Hotstar and Colors.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
5: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे, अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे. और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी, उसको आगे जाने से रोक. बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है.
4: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
1: चलिए भाई एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दें इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। इंडियन रुपीस मिलेंगे आपको लेम्फाई वाले दे रहे हैं इंडियन रुपीस एक पाउंड के बदले 127.73, अफगानीज 87.41, पाकिस्तानी रुपीस 374.98, बांग्लादेशी टका 166.65 एंड श्रीलंकन रुपी 443.49, यूएस डॉलर्स 1.35।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: राइट भाई, आज गोल्ड का रेट है मार्केट में 105 pounds and 63 pence पर ग्राम।
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
1: चलिए ये तो दीप राजा जी ने अपने बारे में बता दिया कि उनका शो ज़रूर सुना करें एवरी वीकेंड पर। वैसे 2400 घंटे आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में सुना जाता है, मिडलैंड्स में सुना जाता है, जहाँ भी हैं आप कहीं भी सुन रहे हैं, चाहे वो 10:35 AM पर हमारे लाइका गोल्ड को सुन रहे हैं लंदन में, DAB पर, अलेक्सा, गूगल होम एंड LIKAGOLD.COM के ज़रिए। और मेरे बाद आते हैं हमेशा सैटरडे एंड संडे को कौन, विंटेज गोल्ड लेकर सैंडी शाह। लेकिन आज सैंडी नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह होंगे अभिषेक आपके साथ टिल 7 o'clock टिल 10 o'clock। उसके बाद हमारी गोल्ड नाइट्स होती हैं, ओवरनाइट सर्विस, जिसे बहुत पसंद किया जाता है। बैक टू बैक म्यूज़िक आप सुन पाते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो वो भी ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। और अब चल लें, आगे बढ़ लें।
0: ये है लाइका गोल्ड।
1: जी हाँ, लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं। और अब वक्त है कि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको सलील जी के बारे में भी दूं, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट किस, कब वो और कौन से साल में उनका जन्म हुआ था। आज वैसे विधु विनोद चोपड़ा जी का हमने बर्थडे मनाया, कुछ एक गीत मैंने शामिल किए। दैनी इरशाद कामिल हैं एक लिरिसिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, उनका भी बर्थडे आज ही है। 1971 में बॉर्न हुए थे, लेकिन 90s के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। देन पंकज त्रिपाठी इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। मदर ट्रीसा वॉज बॉर्न ऑन 26th of August, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आज हम उनको भी याद करते हैं, जिन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए और बहुत ही चैरिटी के लिए काम किए। आपके मैसेजेस भी बराबर मेरे पास हैं, थैंक यू। इसी तरह से सुनते रहिए, साथ देते रहिए, और मैंने बहुत से मैसेजेस का जवाब भी दिया है। एंड विमल रायन जी, आपने भी अभी अभी ज्वाइन किया है। एंड रजिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन जी, आप भी सुन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: The wait is finally over.
6: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
5: Mirzapur is coming to the big screen.
7: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
5: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
8: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
5: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
7: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
9: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ
10: अपना बनाया तेनू
9: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20 वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216 टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फट
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 02085748410
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
13: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
14: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
15: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves, presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
16: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
17: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
18: Sarita Sabharwal.

0: What a beautiful song. एक गीत था फिल्म महाराजा से, 1998 की फिल्म, और इसे शामिल करने की एक वजह ये थी कि ये फिल्म 4th ऑफ सितंबर यानी कल 1998 में रिलीज़ हुई थी, 4th ऑफ सितंबर 1998. मनीषा कोइराला और गोविंदा ने इस फिल्म में काम किया था. अनिल शर्मा जिन्होंने फिल्म गदर बनाई उन्होंने इस फिल्म को बनाया था, और नदीम श्रवण का संगीत था. समीर ने लिखे थे इस ब्यूटीफुल गाने के बोल. और दूसरा गीत मैंने चुना था फिल्म काश से. ये भी फिल्म कल ही के दिन यानी 4th ऑफ सितंबर 1987 में रिलीज़ हुई थी. काश, जैकी श्रॉफ एंड डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म में काम किया था. महेश भट्ट साहब ने बनाई थी ये फिल्म. राजेश रोशन जी का संगीत था. फरूक कैसर ने इस फिल्म के सारे गाने लिखे थे. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए. इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी, वेलकम. लेकिन बहुत लेट आए हैं, कल से प्लीज़ सैटरडे एंड संडे तो सरिता आती है आपकी सेवा में, तो कल प्लीज़ 4 बजे मेरा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like a gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बहुत आसान है. You can go into the branch online or SBI Yono mobile app के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. Terms and conditions are always there. And आज आपके 1 British sterling pound के बदले आपको मिल सकते हैं 127 rupees and 15 paisa.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hello?
3: Mel, something huge has landed.
2: The UFOs, it's all over the news.
3: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
2: I think that's why the aliens are here too.
3: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
5: Like a Gold.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: We're finally going home for the wedding.
8: No, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me.
3: Southall Travel, at all protected.
4: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
5: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
6: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
9: It's this weekend, the NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
10: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
11: जिस दिन

0: इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है माला सिन्हा, जिन्होंने बहुत सी प्यारी प्यारी फिल्मों में काम किया, और मैंने आज चुना 1961 की फिल्म माया से ये गीत, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने पसंद जरूर किया होगा।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: बिग बॉस के जो प्रेमी हैं उन्हें बता दें कि द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो इज एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार. फ्रॉम दिस संडे यानी कि 6th of September यानी कि कल से. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड एंड अलॉन्ग विद द लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी. ज़रा ये इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लीजिएगा. द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय NKN मीडिया इज बैक 5th and 6th September यानी आज और कल होगा एट लंदन हिल्टन पार्क लेन एंड फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रगंधा सिंह एंड नरगिस फाकरी. फ्री एंट्री रजिस्टर एट NKN PropertyExpo.com. Exclusive radio partners hain Laika Radio.
0: Sarita Summerwall with your weekend classics. Laika
4: Gold. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Sarita Sabawal. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: चलिए भी आपको जल्दी से बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, आपका एक पाउंड आपको क्या दिला सकता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक पाउंड के बदले आपको 127 रुपीस एंड 77 पैसा मिल सकते हैं इंडियन करेंसी में। अफगानीज 87.45, पाकिस्तानी रुपीस 375.2, बांग्लादेशी टका 166.60 एंड यूएस डॉलर्स 1.35।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabawal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: चलिए भी आपको बता दें कि गोल्ड का रेट आज मार्केट में क्या है, 105 पाउंड्स एंड 63 पेंस का एक ग्राम सोना।
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only LIKA Gold.
1: Sarita Sabawal with your weekend classics.

0: ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ कि मेरा साथ आपने पसंद किया, मेरे चुने हुए गीत आपको पसंद आए। ये गाना भी बहुत खूबसूरत था जिसे मैंने दो उस्ताद फिल्म से चुना था। रेयर हिट्स होते हैं, कभी कभी प्ले होते हैं, और जब भी प्ले करते हैं हम तो आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बड़े प्यार से आपने मेरा साथ दिया है। कल फिर मिलने का वादा है, लेकिन मैं बता दूं कि आज विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सैंडी शाह नहीं बल्कि अभिषेक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे मेरे बाद, और आप उनका साथ देंगे टिल 10 o'clock। इसके साथ साथ हमारी गोल्डन नाइट्स होती हैं, और गोल्डन नाइट्स में भी बहुत से अच्छे अच्छे गीत आपको सुनने को मिलते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। सो अब जाते जाते तो सरिता यही कहेगी कि कल मिलने का वादा है, तो कल मेरा साथ देने के लिए हाजिर हो जाइएगा। जिस भी जरिए से आप प्रोग्राम को सुनते हैं इसी तरह से सुनते रहिए। अपने जानने वालों को भी बताइएगा कि हमारा गज़ल चैनल भी आ रहा है, एंड हम बहुत जल्द बर्मिंगम में आ रहे हैं। सो बहुत एक्सपेंड कर हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से अब सरिता आपसे विदा लेती है। बाय-बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग, एंड ऑफ कोर्स टुमारो एज़ वेल। बाय।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
3: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
4: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
3: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
4: Friends, family, या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: दुबई इज कमिंग टू लंदन।
1: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर, स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो बाय NKN मीडिया
5: एट अ लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन। मीट टॉप एलीट डेवलपर्स फ्रॉम दुबई, एक्सप्लोर हैंड पिक्ड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड डिस्कवर व्हाट मेक्स दुबई वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग प्रॉपर्टी मार्केट्स।
1: स्पेशल अपीयरेंसेस बाय चित्र Rhonda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
5: Hurry and register now
1: at nknpropertyexpo.com.
5: Your next investment could begin here.
1: Official radio partner, Leica Radio. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर बिग थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. है।
9: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल।
10: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
9: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
11: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
12: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
11: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
12: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
13: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
12: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
1: Sarita Sabalwar with your weekend classics.

0: और पंख होके तो उड़ाती रे, कौन आ जाती है आपके पास? जी हाँ, लता मंगेशकर थी ये जो बोल रही थी, पंख होते तो उड़ाती रे। और उसके पहले पहला गाना जो आपने सुना वो मुकेश जी की आवाज़ में, थोड़ी सी स्लो शुरुआत पर मुकेश जी के लिए भाई। कोई सा भी गाना हो मुकेश जी का बहुत अच्छा लगता है। मुकेश जी का पहला गाना, दूसरा गाना लता मंगेशकर का फिल्म सहरा से। और आगे बढ़ने के पहले बताता चलूं भाई, अभिषेक दीक्षित आज आपके साथ रहेंगे विंटेज गोल्ड पर पूरे 3 घंटों के लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
3: Like our gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: No, sorry, mate.
7: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
8: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with a Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
10: The wait is finally over.
11: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
13: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie. Cinemas now.
14: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
15: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
16: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
15: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
16: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
17: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
16: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
18: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
19: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
18: ये तो बताओ कोई पता चला?
19: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
18: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
0: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
5: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade.
1: upgrade. Visit heraldplastic.com.
20: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
21: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
22: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
23: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
1: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Leica Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे Feel good track brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 1940 के दशक में बनी ये फिल्म आर के बैनर के तले बरसात फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और आर के बैनर की फिल्म थी तो राज कपूर ने बनाई होगी, और अगर राज कपूर ने बनाई होगी तो फिर संगीत मतलब म्यूजिक किसका रहा होगा भाई? आप बताइए, अगर आपको याद बन पड़ा आता है तो बताइए मुझे कि किसका म्यूजिक रहा होगा इस फिल्म में। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, डेरी वैली के सौजन्य से ये आपके घरों तक पहुंचा भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting

0: यह है नूतन जो चली जा रही है अपनी साइकिल पर अपने साथियों के साथ में गाती हुई और अब गिरने वाली है। ना गिरी के नहीं भाई, ये अनारी फिल्म का गाना था। 1900 कब आई थी ये? अगर आपको याद आता है तो बताइए। इसके पहले मैं जो गाना बजाया था उसका मैंने म्यूजिक डायरेक्टर जो उनके थे उसका नाम नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा था कि उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। बरसात फिल्म का गाना था इसके पहले। ये गाना जो आपने सुना बन के पंछी गाय प्यार का तराना, अनारी फिल्म का गाना 1950 के दशक में। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एक ही रहे हैं भाई। दोनों में हमारे राज कपूर थे। एक राज कपूर ने बनाई थी, एक में राज कपूर अभिनेता थे। अनारी फिल्म बनाई तो राज कपूर ने नहीं थी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी ये। पर दोनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स एक ही थे, याद बन पड़ाता है तो बताइए। फिलहाल ये है विंटेज गोल्ड, आपके साथ मैं अभिषेक दीक्षित। और यहाँ पर आप बताते चलें भाई कि मर्सिडीज अगर आप चलाते हैं तो यह संदेश मर्सिडीज बेंस वेंस की ओर से लाइका गोल्ड के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर निर्भर करता है। इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंस वैन्स लेकर आया है अप टाइम प्रॉमिस, आपके बिजनेस को लगातार चलते रहने के लिए अनेकों फायदे का एक पैकेज है। जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ते रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब एक ही जगह है। क्या है वो? मर्सिडीज बेंस वेंस, आपके साथ। आज ही मर्सिडीज बेंस वेंस को सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू भाई। अप टाइम प्रॉमिस कुछ पात्रता मानदंडों, वाहन के अनुकूलता और मर्सिडीज बेंस के अधिकृत रिपेयर से सर्विस करवाने पर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई नियम और शर्तें लागू होंगी। और अधिक जानकारी के लिए जाइए mbvens.co.uk। अप टाइम प्रॉमिस और जानिए कि और क्या क्या है वहां पर।
1: सैंडी शाह लाइव ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन।

0: हर तरफ।
1: महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज, विश्वास होता है आपको ये महेंद्र कपूर हैं?
2: चार चांद लग गए।
1: आंचल फिल्म का गाना 1960 के दशक में आई ये फिल्म, और इसके पहले मैंने जो दो गाने सुना है उसके बारे में मैंने एक छोटा सा पॉपअप क्वेश्चन पूछा कि उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो भाई काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अनारी फिल्म और बरसात फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एक ही हैं। कौन है वो भाई? शंकर जयकिशन। जी हाँ, अनारी फिल्म में मन्ना डे ने भी एक आध गाने में अपना म्यूजिक दिया था, अगर वो गाना बजाया तो ज़रूर बताऊंगा। पर मेन म्यूजिक डायरेक्टर जो रहे अनारी फिल्म के वो थे शंकर जयकिशन, और वही बरसात फिल्म के भी संगीत निर्देशक। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बुढ़ा मिल गया फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपके घर तक पहुंच रहा है लाइका गोल पर।
3: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।

0: जी हाँ, ये वही फिल्म थी बुड्ढा मिल गया, जिसमें वो गाना है रात कली एक ख्वाब में आई। ज्यादातर वही गाना बजाया जाता है जहां भी आप सुने, रेडियो हो और कोई शो हो और कहीं कोई गाना पसंद करे, वही गाना होता है। पर ये गाना बड़ा ही रेयर और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिया ना लागे मोरा, लता मंगेशकर की आवाज, बुड्ढा मिल गया फिल्म, 1971 की ये फिल्म। और काफ़ी सारे लोगों ने अभी अभी अपने मैसेज भेजने शुरू करे, भाई पूछ रहे हैं आज यहाँ पर कौन है। तो मैं हूँ भाई अभिषेक दीक्षित, आते जाते रहते हैं यहाँ पर। आज सैंडी शाह का शो विंटेज गोल्ड आपके साथ में अगले 3 घंटों के लिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/aldi price match.
3: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
4: Travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahi nahi mil sakta. Call Travelhub 24/7 on 0208 782 8833 or visit travelhubworld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Dubai is coming to London.
7: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
6: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
7: Special appearances by Chitranga Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
6: Hurry and register now
7: at nknpropertyexpo.com.
6: Your next investment could begin here.
7: Official radio partner, Leica Radio.
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा।
12: नाम है तेरा।
11: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
14: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
15: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
16: Cutthroat Ke Khiladi.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
19: Shoaib Alam pesh karte hain soulful qawwali ki mehfil, qawwali queen Tayyiba Khan ke saath.
2: Apna banaya tenu.
19: Lutf lijiye unki shandar gaayiki ka. Wednesday 9th September, Greenford Town Hall mein aur Thursday 17th September, Ilford Town Hall mein. Tickets starting from £20. VIP and meet and greet tickets also available. Booking or inquiry ke liye call Shreya Alam on 07939-137-216. Tickets also available at Khan Baba Restaurant, 407 High Road, Ilford.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasa.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड.

0: हाँ जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, दूर की आवाज़ फिल्म का ये गाना दिल मेरा खो गया है आज कहीं। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं भाई, ये क्या हो गया मेरी ज़बान को, काफ़ी सारे संदेश मिल रहे हैं और आपके संदेश बता रहे हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। भाई आपके संदेश भेजते रहिए, दो और गाने हैं इस आवर में।
1: This is like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda.

मुबारक बेगम की आवाज़ सुनिए। हाँ जी, ये मुबारक बेगम की आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी के साथ हमराही फिल्म का गाना। विंटेज गोल्ड का पहला आवर ख़त्म हुआ जाता है, विश्वास नहीं होता। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको किशोर कुमार के साथ छोड़े जाते हैं और मैं आपको मिलूंगा न्यूज़ के उस पार। Reminisce those classics on Like a Gold.

0: हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं, मोहब्बत से खफा हो गए हैं।
1: बस देखा खफा हो गए।
0: भीगी रात फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, और इस गाने में आपको एक इको सुनाई देता है। जैसे ही वो अपने स्टेंजा को खत्म करते हैं भाई, उससे गाने को एक बड़ी अच्छी ऊंचाई मिलती है। फिलहाल सेकंड आवर की शुरुआत हुई है दो गानों से। पहला गाना आपके सजन सावन में लता मंगेशकर की आवाज, चुपके चुपके फिल्म का गाना, जिसके आखिरी में आपको पता है क्या होता है? हाँ जी, हमारे धर्मेंद्र साहब जो बने हुए हैं ड्राइवर, अपने बीवी, उनकी, उनका नाम क्या था भाई, कौन सी अभिनेत्री थी जो उनकी बीवी थी, उनके जीजा जी के घर पहुंच जाते हैं। और जीजा जी कौन है भाई? हमारे ओम प्रकाश जी बड़े अच्छे से शक करते हैं कि भाई मेरी साली का ड्राइवर के साथ कुछ अफेयर चल रहा है, और उन्हें इस गाने में ऐसा शक होता है। याद कीजिए वो गाना, बड़ा ही अच्छा बन पड़ाया था पर्दे पर। और दूसरा गाना भीगी रात फिल्म से। और आगे बढ़ने के पहले भाई क्षमा मांगना चाहूँगा, जब न्यूज़ की शुरुआत होती है तो कुछ सिस्टम ग्लिच के कारण काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चलने लगती हैं, आपको अगर उससे असुविधा हुई हो तो भाई क्षमा कीजिए, मतलब सॉरी, पर मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, ये सिस्टम की ग्लिच थी। अगर फिर से सुनाए तो फिर पहले से ही सॉरी बोल देते हैं, पर उसके बाद तो भाई अच्छा बन पड़ा है प्रोग्राम। विंटेज आवर के सेकेंड आवर की शुरुआत के दो गाने आपको अच्छे लगे, आपके मैसेजेस मतलब संदेश बता रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे गाने हैं, बने रहिए मेरे साथ।
2: ये है लाइका गोल्ड SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and condition apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
4: Ye hai.
5: Like a gold.
6: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
11: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danube 11, 11. Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place. 11,
12: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danube 11, 11. Danube Properties. 11, 11.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: It's this weekend, the NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
15: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
14: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुरैया की आवाज में आपने ये गाना सुना, अमर कहानी 1940 के दशक की फिल्म। डेरी वैली के सौजन्य से आपके घर तक पहुंचा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold.
4: Laika Gold.
3: Across Greater London and Greater Manchester, this is Sandy Shah.

0: तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज, 1952 पर्वत फिल्म का ये गाना। और आपको बताते चलें कि भाई, द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट यू बाय एनकेएम मीडिया इज बैक ऑन 5th and 6th of September एट लंडन हिल्टन पार्क लेन, फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह, टंग ट्विस्टर है भाई मेरे लिए, माफ कीजिएगा, एंड नरगिस फाकरी। फ्री एंट्री है भाई, रजिस्टर एट nkpropertyexpo.com। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: एक बार फिर शंकर जय किशन, क्या धमाकेदार म्यूजिक, बहुत ही बढ़िया गाना, काफ़ी लोगों ने पसंद करा, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं भाई। भेजते रहिए आप लोग, मैसेज भेजते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ हौसला अफजाई हो जाती है, कुछ प्रोत्साहन मिल जाता है और ऐसा पता चलता है कि यहाँ से जो बोला जा रहा है दूसरी तरफ सुना जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। फिलहाल गोपाल दास नीरज, मतलब कवि नीरज भी कहा जाता है उनको, बहुत सारे गाने तो नहीं लिखे पर उनका लिखा हुआ ये गाना कन्यादान फिल्म से पहुंचा आपके घर तक लाइका गोल्ड की ध्वनि तरंगों पर सवार होकर। सुनते रहिए। South Hall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact South Hall Travel today on 0208-574-8410. South Hall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू

0: एक वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर गाना आपके सामने प्रस्तुत किया भाई लता मंगेशकर की आवाज़। अंबर फिल्म का ये गाना था, 1950 के दशक में आई फिल्म, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर, आज पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बार बार म्यूजिक डायरेक्टर्स की तरफ जा रहा है, गुलाम मोहम्मद थे इसके म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत सारी फिल्में तो नहीं की, पर पाकिजा फिल्म याद बन पा रही है आपको? जी हाँ, उसमें म्यूज़िक उन्होंने ही दिया था। पाकिजा ज़रा लंबी खिंच गई थी, 1960 के दशक में गुलाम मोहम्मद साहब का देहांत हो गया और पाकिजा उस समय तक रिलीज़ भी नहीं हो पाई, जो बाद में 1970 के शुरुआती समय में रिलीज़ हुई। और गानों के मामले में तो भाई उस फिल्म की कोई सानी नहीं। फिलहाल लाइका गोल्ड से आपने गाना सुना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और रुपए पैसे की बात करते हैं। LemFi आज आप यूज करेंगे तो एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड आपको दे सकता है 127 इंडियन रुपीज

0: और मोहम्मद रफी आशा भोंसले का ये गाया गाना कितना अच्छा बन पड़ा है, कितना अच्छा बन पड़ा आया भाई, एक मुसाफिर एक हसीना का ये गाना। और लाइका गोल्ड के विंटेज गोल्ड के आज के सफर का दूसरा आवर लगभग खत्म हुआ जाता है, 10 मिनट बाकी है, इसका मतलब दो गाने और, सुनते रहिए।
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: हम दोनों फिल्म का ये गाना आशा भोंसले की आवाज में किसी और गाने से मिलता जुलता है, याद आ रहा है वो गाना, इसी फिल्म का था। और इस गाने के साथ हम आ पहुंचे हैं विंटेज गोल्ड के सेकंड आवर के ऑलमोस्ट एंड की तरफ। भाई अब क्या है, 5-7 मिनट बचे हैं, फिर भी एक गाना तो आएगा, मुकेश जी का वो होगा गाना और माय लव फिल्म का ये गाना होगा। उसके पहले भाई एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देता चलूं, आप लोगों के मैसेजेस बता रहे हैं कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, भाई बड़ी अच्छी बात है। लास्ट आवर कोशिश करूँगा कि ऐसे गाने बजाएँ जिससे आपका जो दिन अब खत्म हो रहा है बड़ा अच्छा सा बन पड़ा है। तो कहीं जाइए मत, सुनते रहिए लाइका गोल्ड।
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham wide on full scale DAB digital radio.

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना हो मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना,

0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया।
3: हाँ जी, ये हाफ टिकट फिल्म का गाना था किशोर कुमार की आवाज़ में, और उनके साथ कौन थे भाई? उनके साथ किशोर कुमार ही थे। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि किशोर कुमार और एक फीमेल सिंगर को ये गाना गाना था, क्योंकि आपने अगर ये गाना याद बन पड़ा आता हो तो किशोर कुमार अपने चेहरे के पीछे एक फीमेल मास्क लगाकर दोनों तरफ से गाना गाते हैं, बड़ा स्टेज पर बन पड़ाने वाला अच्छा गाना था। वो सिंगर पहुंची नहीं, किशोर कुमार ने बोला कि चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूं, और गाना मस्ती भरा था, उन्होंने गाया भी मस्ती भरा, और इस तरह ये गाना बना। फीमेल सिंगर को अपनी आवाज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मज़ेदार गाना आके सीधी लगी दिल पे मेरे। हाफ टिकट फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़, उसके पहले पहला गाना शर्मीली फिल्म का था भाई। वो इस तरह के गाने लता मंगेशकर जी जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये गाने चलते जाएं, ऐसा लगता है कि एक के बाद एक स्टैंजा आते ही जाएं, कहीं रुके नहीं ये गाना। फिर भी सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड का ये गाना, ऐसा लगा कि बड़ा छोटा बना दिया भाई, एक दो स्टैंजा और बना देते तो वो भी सुन लेते। फिलहाल विंटेज गोल्ड के थर्ड एंड फाइनल आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ बने हुए मैसेजेस बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, और भी कुछ बढ़िया से गाने हैं लाइका गोल्ड पर। अभिषेक आपके साथ।
4: दिस इज लाइका गोल्ड SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
3: Your £1 in British sterling can get you up to 127 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
4: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
7: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
8: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
9: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
10: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
10: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
10: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
14: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर बिग थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk।
15: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
3: और लाइका गोल्ड पर हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं माला सिन्हा जी। भाई माला सिन्हा जी की पहली फिल्म कौन सी थी आपको पता है?
17: प्यासा, उसी फिल्म का एक गाना सुनते हैं, बड़ा ही प्यारा गाना है, सुनिए लाइका गोल्ड से।

0: गीता दत्त की आवाज। दो भाई फिल्म का ये गाना 1940 के दशक में आई। टेरी वली के सौजन्य से आपके घरों तक पहुंचा भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Laika Gold.
2: Ye hai Laika Gold. Laika Gold. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: हाउस फिल्म का ये गाना तलत महमूद की आवाज़ में आपने सुना और साथ में लता मंगेशकर थी भाई। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं 1950 और 60 के दशक में जब लता 60 तो फिर भी ठीक है 1950 के दशक की लता मंगेशकर की आवाज़ को सुनता हूँ तो विश्वास नहीं होता कि वही लता मंगेशकर है। फिलहाल विंटेज गोल्ड का सफ़र जारी रखेंगे, बहुत ही बढ़िया गाना आने वाला है मुकेश की आवाज़ में, एक रेयर फाइंड है, ज़रूर सुनिए।
1: Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: अब भाई ये क्या हो रहा है, जब भी मैं संगीतकार की तरफ अपनी निगाह उठाता हूँ पता चलता है कि वो शंकर जयकिशन थे, जैसे कि इस गाने में भी, संगम फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। और स्क्रीन पर कौन दिखाई दिया अगर याद बन पड़ आता है तो बताइए। मैं ये बता देता हूँ कि अभिनेत्री थी वैजयंती माला।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आप अगर LemFi का यूज करेंगे तो आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज, 87 अफगानी, 374 पाकिस्तानी रुपीज, बांग्लादेश 166 बांग्लादेशी टाका, 443 श्रीलंकन रुपीज, केनियन शिलिंग 174 और 1.3 US डॉलर्स।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at 105.35 pence per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Like a Gold. London's number one Asian retro music station.

0: हेमंत कुमार की आवाज और उन्हीं का संगीत, इंस्पेक्टर फिल्म का ये गाना
1: 1950 की थी ये फिल्म।
0: वन ऑफ द रेयरेस्ट फाइंड लाइका गोल्ड से आपके घरों तक पहुंचा है। सुनाया किसने भाई? मैंने, अभिषेक दीक्षित आपके साथ।
2: विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह।

दोस्ती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज के साथ, भाई इससे बढ़िया गाना क्या हो सकता है जो आखिरी दो गाने हो उनमें से एक। इसका मतलब ये कि मेरे जाने का समय हो गया। चलिए आखिरी 10 सेकंड सुन लेते हैं मोहम्मद रफी।

और मैं कल फिर आऊंगा आपके साथ यहीं पर सैंडी शाह की जगह, और फिर से आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे गाने लगाने की कोशिश करूंगा। और कल कुछ जो टेक्निकल इश्यूज हुए वो शायद ना हो, और जो डबल एक गाना बच गया वैसा भी ना होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए भाई, अभिषेक के साथ थे आप विंटेज गोल्ड के सफर पर। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए। अभी मन्ना डे के साथ आखिरी गाने के लिए L-Y-C-A. This is Leica.

तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम।

0: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
4: हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: London's favourite Bollywood classics all night. This is Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवन दान तथा टू मेरी जान एक्स्ट्रा लाइफ एक्स्ट्रा मौका मतलब एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्स्ट्रा धोखा स्ट्रीमिंग फ्रॉम 6 सितंबर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स।
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
6: Leica Gold par har raat ki yahi reel. पुराने मगर सदाबहार गीत।